जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो गणपति महाराज उसकी हर विनती सुनते हैं। आइए इसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनते हैं गणपति महाराज जी का यह भजन।

जिस घर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है, वहाँ खुशियाँ, शांति और प्रेम अपने आप आ जाता है।

जिस घर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है, वहाँ खुशियाँ, शांति और प्रेम अपने आप आ जाता है।

जब मन में श्री कृष्ण का नाम बस जाए तो हर दुख छोटा लगने लगता है। जिसका सहारा गिरधर गोपाल हो उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।

भोले हैं भंडारी हैं, सबके संकट हरने वाले हैं। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को करार नहीं आता। यूं तो लाखों हंसी चेहरे हैं इस दुनिया में, यूं तो लाखों हंसी चेहरे हैं इस दुनिया में, पर तेरे जैसा नजर दिलदार नहीं आता। तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को करार नहीं आता। मैं क्या जी, जो रूह तो रूह का रिश्ता बनया हो फिर देखे बिना मिले बिना किवें करार आ सकता है, किवें चैन आ सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। FM बैंड 102.7 MHz, FM बैंड 103.6 MHz नाल दी नाल न्यू जोन AIR ऐप वाले दोस्तों एक बार फिर तो प्यार भरी सत श्री अकाल। और स्टूडियो घड़ी का समा 7:53 हो रहे हैं जनाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके थोड़ा दोस्त RJ ललित सोनी एक बार फिर तो हाजिर हो गया जनाब।

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी इह हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा FM Rainbow New Tune।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। अपनी कवितावां दे जरिए प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगा रहे हैं। जनाब तुसी भी प्रोग्राम च शिरकत कर सकते हो। समा इस वक्त 9:38 और 4 सैकेंड हो रहे हैं। तो तुसी भी प्रोग्राम च शिरकत कर सकते हो अपनियां लिखियां लिखतां दे नाल। और एक खूबसूरत जी कविता मेरे तक पहुंची है और बहुत सोहणे लफ्ज़ां दे नाल परोई हुई कविता है, ये सानू भेजी हुई है। लिख रहे ने, सत श्री अकाल जी, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं समर्पित मेरियां सतना। अज दे अखबार दे विच कहिंदे ये छपियां ने, मनजीत सिंह बद्दन पिंड बद्दोवाल लुधियाणा तों। सो इन्हां दा टाइटल है कविता दा, तत्ता तवी छछा छवील। सो आओ इस कविता नूं पढ़दे हां। लिखिया है, तत्ता तपिया महीना जेठ दा, तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें ऐड़ा अग वराई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें तद्दा तरत तपाई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें बब्बा बिरख सुकाई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें जज्जा जनोर सताई जावे। तत्ता तिकड़ी चंदू प्रिथिए जहांगे दी, फतवा बनाई जावे। तत्ता तको इस महीने तसिया दी, अत कराई जावे। तत्ता तत्ती तवी ते गुरु अर्जन देव जी, जज्जा जप दे बाणी। तत्ता तड़फण लोकी, पर गुरता ठठा ठंड वरताई जावे। तत्ता तकन लई गुरां दा मुख, लल्ला लाट उच्ची हो जावे। तत्ता तत्ती तत्ती रेत च चरण परसनू हेठा हो आवे। तत्ता तस्वी फड़के सस्सा साई मियाँ मीर जी नेड़े नू होए। तत्ता तक्या मंजर अखा विचो, हाहा हंजू ते हंजू चो जावे। तत्ता तमाशा तकण नहीं आया हाँ मैं, साई फरमावे। तत्ता तुसी हुक्म करो, तत्ता तख्त लाहौर दा पलट जावे। तत्ता तैश दा दद्दा द्वेश ते, डड्डा डर तो दद्दा दूर किते परे परे। तत्ता तेरा पाणा मीठा लागे, सस्सा सच्चा बोल उड़दा आवे। तत्ता त्रिलोक दे मालक ओ, पंचम पातशाह बब्बा बाणी वाले। तत्ता त्रिदोख दी पीड़ा दर्द नू, गग्गा गुरु जी मिटावन वाले। तत्ता त्रिण पर भी ना डोल सके, तत्ता तसीए पातशाह जी नू। तत्ता तृप्त ने ओ पुंज, तत्ता तृप्त ने ओ पुंज, सस्सा सदा सदा अपंग शांति वाले। तत्ता तशबी ऐसी की दुनिया विच किते नज़र ना आवे। तत्ता त्यो कृपा नाल मालका, बंदा सच दा मार्ग पावे। तत्ता तख्त हजारा जगत विच, रारा रुलदे रुलदे रुल गए। तत्ता तत् खालसा अज भी, सस्सा संगत नू छबील छकावे, सस्सा संगत नू छबील छकावे। सो बहुत ही खूबसूरत कविता।

0: दिन अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश करने वालों को, सभी को और श्रोताओं को रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का प्यार भरा आदाब। आपका दिन शुभ हो।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: बहुत दूरों सानू मैसेज कर रहे थे और एक होर मैसेज पहुंचा है बस्ती शेख जलंधर तो, सानू मैसेज कर रहे हैं बिंदु जी, कहिंदे ने कि प्यार जड़ा है सिर्फ शब्दां दे नाल जताया नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और अज के टाइम दे विच लोग एक दूजे नू समझन दी बहुत घट कोशिश करते हैं, इसलिए दिल तो रिश्ता बनाना जड़ा है वह सीखना चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो एक होर मैसेज सानू भेज रहे हैं दोस्त कि कहिंदे ने कि सादगी इंसान की शख्सियत नू निखारदी है, जबकि दिखावा सिर्फ कुछ पलों ध्यान खिंचता है। यह सू मैसेज भेजा सी हरजिंदर सिंह मौमी वीपीओ इबन कला अमृतसर तो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक होर वॉइस मैसेज पहुंचा है, जाते जाते इस वॉइस मैसेज में भी प्रोग्राम से शामिल करते हैं।
3: आवाज की दुनिया के दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं सतनाम सिंह रखरा वाघा प्राणा जी, प्यारे वीर ललित सोनी जी तू भी प्यार भरी सत श्री अकाल। होर वीर जी ठीक ठाक हो
1: जी? चढ़ती कला जी,
3: अज ऐतवार का दिन है तो धुप भी पूरी कड़ाके की पै रही है, गलबात चल रही है अब ब्लड बारी। वीर जी मैं 14 बार ब्लड डोनेट कर चुका है, बाकी ब्लड देकर किसी की जान बचा इस तो वाला पुण्य का कोई काम नहीं है जी। सब तो वाला पुण्य है जी, मान लो तुम अपना खूनदान दे सकते हैं तो एक कीमती जान बचा भी सकते हैं, बाकी कोई घबराने की गल नहीं होंगी। ये तकरीबन भी 12 घंटे यह खून अपना फिर पूरा हो जाता है, इन्ना भी जूस वगैरह पियो, गर्म दुध पियो, तो मन से टेंशन ना रखियो भी अभी खूनदान करता पता नहीं हो गया
2: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी जी अज के दिन तुम भी संकल्प लेना है कि ब्लड डोनेट जरूर करना है और अपने किसी खास सज्जन मित्र की तुम जरा कीमती जान बचा सकते हो। सो बुजारत की मैं गल कर रहा सी, मैं एक बुजारत पूछी थी, पिंड के हर घर का शिंगार चाहे अंदर रखो चाहे बाहर, घर इस तो ना कोई वांझा, किसी को दो किसी को चार हो, इसका जवाब है मंजा। सो एक डायलॉग मैं थोड़े नाल साझा किया, उस फिल्म का नाम है नी मैं सस कुटनी, जिस अनीता देवगन, निशा बानो, करमजीत अनमोल तो होर भी साथी कलाकार जड़े उस आवाज़ दे विच तुसी सुने। सो यही सी अज दा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिन्हां दोस्तों ने प्रोग्राम दे विच शिरकत की और जिन्हां दोस्तों ने प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगाई उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्हां ने घर बैठ के प्रोग्राम दा आनंद माणिया उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी वक्त फिर किसी वेले तुहाडे नाल होवेगी फिर तो मुलाकात, क्योंकि अगले आरजे की एंट्री हो चुकी है, अगला खूबसूरत सफर तुसी आरजे वंदना जी दे नाल इंजॉय करोगे। तद तक जी मैनू दिओ इजाजत ते अपना तुसी रखना ढेर सारा ख्याल, और इसी तरह ही सोहने सोहने गीत इंजॉय करते रहना FM रेनबो के नाल।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

जी हाँ, हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए। बिल्कुल जी, जदों असी जिंदगी दे विच एक इंसान नू अपना तन मन धन जड़ा अर्पण कर दिंदे आ ते फिर प्यार भी एक्सप्रेस करना जरूरी हुंदा है ना। असी कहने ते आ कि असी प्यार बहुत करदे आ पर असी एक्सप्रेस नहीं करदे, ते एक्सप्रेस करना जताना प्यार बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते दे विच। इसे करके तो दिलीप जी कहंदे ने जी, हर वेले सुबह शाम आते जाते मैं कहता हूँ आई लव यू, क्योंकि ये जरूरी है सामने वाले नू एहसास जताना, क्योंकि पता तो सारिया नू हुंदा है पर सुनना हर एक नू चंगा लगता है। प्रोग्राम गीत बहार तुसी इंजॉय कर रहे हो मेरे नाल, अपनी दोस्त वंदना दे नाल। इस खूबसूरत जी सवेर नू होर खूबसूरत बनाने लई मैं लेके आई हाँ बहुत ही सोहने सोहने जे नगमे तुहाडे वास्ते। इदां दे गाने जदों तुसी सुनोगे ते तुसी भी 90s दे उस एरा दे विच पहुँच जाते हो, मैनू लगता है मेरी तरह ही, कि असी याद करते हैं वो गोल्डन पीरियड जड़ा है, वो गोल्डन एरा म्यूजिक का भी तो साड़ी जिंदगी का भी, क्योंकि 90s जड़ा सी ना वो वाकई बहुत ही अलग जड़ा है ना वक्त सीगा, बहुत अलग वेला सीगा। उन्हां दियां यादां जो सुनिया जांदियां मैमरीज ने उन्हां नू भी सुन के इदां लगता है कि असी वाकई उस जमाने दे विच पहुँच गए हैं। ते अगला ट्रैक भी एक बहुत ही खूबसूरत जिहा रोमांटिक ट्रैक, कि जदों कोई इंसान जिंदगी च आ जाए, दिल खुश हो जाए उन्हें मिलके, तो फिर होर जिंदगी च की चाहिदा हुंदा है, क्योंकि जिंदगी दियां बहुत सारिया मुश्किलां असीं उस इंसान दे नाल हसदे हसदे ही जड़ियां ना पार कर जांदे आ। सुनदे आ इस तरह का एक खूबसूरत जिहा नवा इदां दा, जदों तुसीं सुनोगे तो तुहानूं लगेगा कि ये फ्रैश एकदम ट्रैक है, कुमार शानू ते साधना सरगम की आवाज़ के।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
2: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा

0: यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान है, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
2: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
2: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है, और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है, और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर, और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन 57 मिलियन US डॉलर का, ये हमारे यहाँ से जाता है, ये ताजा फलों के रूप में जाता है, और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है, जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है, और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पचेती हैं, और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुत्फ उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूं कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं, तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं
1: जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
3: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है, और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं। और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है, और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो, या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
1: जी।
3: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए, और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं, और आज ये सभी किस्में

0: में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए। और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है, और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी, तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
2: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं।
1: जी,
2: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
3: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के, जो आपने सुना होगा जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा रामकेला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं, और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री या यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह की खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है। और यहाँ जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए
1: जी।
3: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्रायः देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है, तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
3: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आधार

0: पे कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है। और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
0: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है। और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉयल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया है जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यही रिडक्शन वो कराते हैं, फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो। वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे, और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब हमें
0: हाँ, हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहाँ एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं। और सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है, और ये मैं कहूँ कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया
1: जी। बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूँगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल है कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वचन की चिट्ठी आई है, ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हमारे साथ हैं डॉक्टर जय प्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखे तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है, और उसमें अभी भी हर साल फल आता है। तो सबसे अच्छी अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता तो हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में

0: रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं, उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
1: जी।
0: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं, जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर का, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
1: जी,
0: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
1: जी,
0: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
1: जी।
0: तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है,
1: गुण हो गया।
0: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
1: जी।
0: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुण है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए
1: जी,
0: अगर आपने मैंजीफोरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्में है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे अगर आप, जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
1: जी।
0: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, ठीक हो जाए
1: जी। डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
0: निश्चित रूप से आजकल देखे तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफार्म। जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है, तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है और उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे लगा के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है, और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें, हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है। जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण

0: भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे कहा जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे ये फसल कैसे स्टार्ट होते, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया, लगभग 6 इंच गहरा बनाया, और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले, और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती
1: है।
2: उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं उसे मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हाथ से, जिससे कि ये फरवरी का महीना होगा, फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का ये प्रयोग करना पड़ता है, और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
2: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी। इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का, गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
2: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
2: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है, तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
2: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
2: गाना तो मैं जो है किसान आदमी हूँ, तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना सुना
1: जी। ठीक है।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उड़ जाता है।
0: जी, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है।
0: जी, मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती हैं और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियाँ जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन जाके वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामित्र है, निमा है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धति को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलावा

0: खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है या आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी न बने। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहाँ सदियों से उगाए जा रहे थे और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो हैं वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर बैगनपल्ली मलियाबाद दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रश्न मिलता है कि वहां के किसान को, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो हैं वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर बैगनपल्ली मलियाबाद दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रश्न मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में उसकी विशेष मांग रहती है, तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असामयिक बरसात हो गई टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4-5 किस्मों का समूह लगाते हैं, इसमें होता क्या है कुछ अगैती होती है कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली और कुछ पेशाती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है, तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान अब आगे बढ़ रहा है, उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ अब हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से जाता है, लंगड़ा चौसा दशहरी केसर है, बैगनपल्ली है, तोतापरी है, इत्यादि जाती हैं, इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग हुआ है। दूसरा है जो वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं वो मध्यम मिठास चाहिए, वो खटास भी चाहिए, तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे, देसी किस्मों को तो हम खाएंगे ही, हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और एक दो वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे, इस तरह से होता है।
1: जी, बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है।
1: जी।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जैसे हम टिकोरा कहते हैं या टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस

0: करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है, और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही हैं और किस्में आई हैं। जैसे मैंने कहा मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रह गई थी, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है, क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाए। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए
1: जी।
0: अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है
1: जी। यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा
0: निश्चित रूप
1: जी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
0: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे मनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं
1: जी,
0: उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए
1: जी।
0: इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं, प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है
1: जी।
0: जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है, और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं
1: जी। मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे? क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है इसलिए?
2: देखिए जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे
1: जी,
2: उससे फल को नुकसान नहीं होता था, अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग

0: पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
0: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते ज्यादा
1: जी, वो करने पड़ते हैं,
0: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो जो है फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
0: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना है, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है
1: जी। और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाएगा,
0: वो भी सब धुल जाता है
1: जी। डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे
1: जी।
2: अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं। तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है
1: जी।
2: जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदें, चाहे कीटनाशक खरीदें, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि वह बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पर आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसकी प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसका उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी।
2: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहाँ तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहाँ के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा
1: जी। चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
2: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाया और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो, तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्त्रक्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है, तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग

0: अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं। किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या कुछ में फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं।
1: जी
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज हो, बायो सेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं अब खाने योग्य नहीं है, तो आप फेंक सकते हैं। तो जो भी एआई है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरी इंडस्ट्री को कर सकते हैं। और ये क्षमता है, और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं, और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूँ, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए, और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ, तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं, और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए, और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं गाजियाबाद से, आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है, वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

ठंडक आ गई है और चाहे धूप निकली है पर मौसम खुशगवार काफी ज्यादा है। तो बस इतने ही असी गलती करते हैं। गलतियां की करते हैं, जिदा सब तो पहली चीज़ तो यह है कि देखो जी, गर्मी का जो मौसम होंगे ना, वह घट खाण का मौसम नहीं है, वह सही तरीके नाल खाण का मौसम है। तो ये असी करना की है, ये जिदा तुसी सुनिया होना है, अजकल एक बहुत इलैक्ट्रोलाइट्स नाम का बहुत वर्ड जिहड़ा है वह यूज़ किया जाता है, जिस तरह कि जदों साडे शरीर दे विच पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, हुण असीं सारे जने बहुत वारी सुनते हैं एक दूसरे नूं कहिंदे आ कि जी पानी बहुत ज़्यादा पियो, पानी बहुत ज़्यादा पियो, शरीर च पानी की कमी नहीं होनी चाहिए चाहे मौसम कोई भी होवे। ठीक है, पर इहदे विच वी ना साडे कोलों इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वह थोड़ी है। पानी जरूर पीना चाहिए पर पानी जिहड़ा वह किस तरह के नाल पीना चाहिए, किस तरह के नाल साडे अंदर, ताकि जिहड़े मिनरल्स ने उहनां दी कमी ना होवे। इलैक्ट्रोलाइट्स उन्हां नूं ही किया जाता है, जिस तरह कि जो असीं कहिंदे आ किसी के शरीर विच पानी की कमी, नमक की कमी आ जाती है, जो सानूं किसी नूं चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी है, या बीपी वगैरह किसी का लो हो जाता है, तो डॉक्टर्स हमेशा ORS जिहड़ा है वह सुजैसट करते हैं, है ना। ORS सुजैसट करन दा यही रीज़न हुंदा है क्योंकि जो साडे शरीर चों बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो पसीने के नाल नाल हुंदा की है, पसीने के नाल नाल साडी बॉडी दे विचों दी सोडियम, नमक जिन्हों कहने आ, पोटाशियम ते मैगनीशियम जड़ा है वह पसीने दे राहीं निकल जाता है साडा। तो असी की करते हैं कि असी सारा दिन सिर्फ पानी पीने रहने हैं, पर फिर भी साडी बॉडी जड़ी है ना वह थकान महसूस करती है, सानू प्यास लगती है, इदा लगता है कि साडे अंदर कुछ ना कुछ कमी तो है, तो उहदा कारण यही है कि असी पानी गलत तरीके नाल पी रहे हैं। तो हुण असी पानी नू किस तरीके नाल सही तरीके नाल पी सकते हैं, तो हुण पानी पीण दा सही तरीका यह है कि पानी नू अलग अलग फॉर्मेशन दे विच पीता जाए। किस तरह, हुण जी इदा है कि देखो हर कोई कोकोनट वाटर तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा कि असी डेली 60-70 रुपए का कोकोनट वाटर या फिर एक टाइम दे विच सारी फैमिली पीए, तो इस करके पानी नू पीण लई ना अलग अलग तरीके यूज़ करने पैने ने सानू, या करने चाहिए ने। जिस तरह कि असी लस्सी बना के पीए, छाछ जिन्हों कहने असी दही दी, जिदे विच जीरा या काला नमक पा के पी सकते हैं, उहदे नाल की हुंदा है कि शरीर के अंदर जड़ा सोडियम की कमी जड़ी है वह पूरी हुंदी है। इस तो अलावा नींबू पानी, नमक, काला नमक पाया उहदे विच, वह पीता जा सकता है चीनी दे नाल, ते उहदे नाल की होएगा कि नमक ते चीनी की कमी बॉडी दे अंदर पूरी हुंदी है पानी दे नाल नाल, ते जड़ा है ना बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रहिंदी है, ते वह इस तरह का एक ग्लास असी पानी का पी सकते हैं। कई लोग कच्ची लस्सी पीते हैं, वह भी पीती जा सकती है जरूर, क्योंकि उहदे विच भी मिठा पा के पीता जाता है। इस तो अलावा सौंफ का पानी पीता जा सकता है, क्योंकि सौंफ ठंडी भी हुंदी है, ते सौंफ नूं जिदा तुसीं राती भिओ दिओ, ते सवेरे उहदा पानी, उस पानी नूं गर्म करो सौंफ वाले पानी नूं, ते उहदा पानी सिप सिप करके असी लै सकते हैं। या फिर कई एरियाज़ दे विच जदों बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी है ना, तो उत्थे चावलों का जिहड़ा माण हुंदा है, मतलब जिन्हों असी पिछ कहने चौलों की, वह पिछ जिहड़ी है वह ठंडी करके वह भी ली जाती है। या फिर तुसीं कितें देखिया होना अजकल पखाल भात बहुत ट्रेंड दे विच है, तो उहदे विच की हुंदा है कि वह पिछ जिहड़ी है वह चौलों के विच ही रहिण दिंदे ने, ते उहनूं अगले दिन खाया जांदा है, उहदे नाल भी शरीर दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी है ना ताकत आती है, तो वो जी साडे बॉडी के अंदर इलैक्ट्रोलाइट्स की कमी हुंदी है वह पूरी हुंदी है। तो खाण पीण जिहड़ा है ना, जिदा हुण मौसम एकदम चेंज हो रहा, असी इन्ना ज़्यादा एकदम पानी पीना बंद नहीं कर देना, पानी नू पींदे रहना है। बस ये फर्क असी करना है कि असी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पीए फ्रिज का, तो नॉर्मल घड़े का पानी, क्योंकि हुण घड़ियां दे पानी भी इस टाइम ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मौसम जिहड़ा है बाहर थोड़ा जिहा ठीक चल रहा है। तो इस करके असी की करांगे, असी उस पानी नू सही तरीके दे नाल यूज़ करना है, उस पानी नू कंटिन्यू पींदे रहांगे, तो पानी की कमी शरीर च नहीं होन देनी। असी मौसम तो उत्ते थले हुंदा रहना है, और यही मौसम जिहड़ा है वह बीमार करन वाला मौसम है। इस करके पहला टिप यही है कि पानी पींदे रहना, अलग अलग फॉर्मेशन च पीना है, तो सारा दिन टैंपरेचर जिहड़ा है वह ध्यान दे विच रख के उस हिसाब का तुहाडे टैंपरेचर जिहड़ा पानी का वा वह भी होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखांगे, तो पानी नू असी पींदे रहांगे ताकि बॉडी दे विच कमी जिहड़ी है किसी तरीके की ना हो, क्योंकि मौसम तो बदलता रहेगा, तो मौसम के नाल नाल ही असी आदतां भी बदलनियां ने अपनियां। फिलहाल सुनते हैं इस खूबसूरत जे ट्रैक नू, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, तो अज गलबात करांगे समर टिप्स ट्रिक्स ते हैक्स के बारे में, तो तुहाडे कोल भी जे कोई इनफॉर्मेशन है इदां दी जिहड़ी तुसी मेरे नाल शेयर करना चाहते हो गर्मियां नू लैके, टिप्स एंड ट्रिक्स नू लैके, या कोई होर तुहाडे आइडियाज़ दिमाग चाहते ने कि गर्मी तो किदां बचिया जा सकता है, या कुछ खास रेसिपीज़ जिहड़ियां तुहाडे घरां दे विच गर्मियां च बनदियां ने, 9855-1010 दे उत्ते तुसी मेरे नाल शेयर कर सकते हो। फिलहाल सुनते हैं इस गीत नू, ते मैं आ रही हूँ फटाफट तो वापस प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

खाली ही लौट आया हूँ मैं बाजार इश्क से, खाली ही लौट आया हूँ मैं बाजार इश्क से, यादें भी ना ला सका उसकी, इतना गरीब था मैं। बहुत ही सोना शेर साढ़े नाल साझा कर रहे ने राम सटूप अरोड़ा सुल्तानपुर लोधी तो। एक होर साढ़े दोस्त सानू मैसेज भेजते ने नंबर ते जो कि हैगा जी साडा 9855102107। एदे ते टेक्स्ट मैसेज करके शेर साडे नाल साझा करदे ने, लिखते ने कि दिल से मिले दिल तो सज़ा देते हैं लोग, दिल से मिले दिल तो सज़ा देते हैं लोग, प्यार के जज्बात को दबा देते हैं लोग, दो इंसानों का मिलना कैसे देख सकते हैं लोग, जब साथ बैठे दो परिंदे भी उड़ा देते हैं लोग। लोहा बाजार मलेर कोटला।

दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं। हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। बहुत ही खूबसूरत शेर साडे नाल साडे जिहड़े लिसनर ने सांझा कर रहे ने, जिन्हां दा नाम हैगा है यशपाल धीमन ते उन्हां दे साथी जो कि हैगे ने मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तों। एक होर साडे लिसनर सानूं एक सोहना जिहा शेर सांझा कर रहे ने, लिखते ने कि तेरी मजबूरियां दुरुस्त हैं मगर तूने वादा किया था याद तो कर। इसी सिलसिले दे विच एक होर जिहड़े साडे लिसनर ने साडे नाल जुड़े ने ते ओह एक जॉन इलिया साहब दा बहुत ही प्यारा जिहा शेर सांझा कर रहे ने, लिखते ने कि रखना था फासला पर तुमसे दिल लगा बैठे, रखना था फासला पर तुमसे दिल लगा बैठे, फिर तुम भी हासिल नहीं हुए और खुद को भी गवा बैठे। सो जिहड़ा सिलसिला है शेर व शायरी का, कवितावान का, गज़लों का, इदा ही चलता रहेगा। तो इसे सिलसिले होर चार चांद लगाने लिए पंकज दास होर एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल तुहाडे लिए पेश कर रही हूँ।

गजल दे एक शेर है, अर्ज किता है कि किसी को दिल से चाहना बुरा तो नहीं, किसी को दिल से चाहना बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना बुरा तो नहीं, अगर ये गुनाह है जमाने की नज़र में, अगर ये गुनाह है जमाने की नज़र में, तो क्या हुआ जमाने वाले भी इंसान हैं, खुदा तो नहीं। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रही हूँ दिल आज शायर अपनी दोस्त होस्ट चार्ज रिया दे नाल। साढ़े बहुत सारे दोस्त साढ़े नाल जुड़े हुए ने, प्यारियाँ प्यारियाँ शेरो शायरियाँ सानू भेज रहे ने साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हैगा है जी 9855 10 10 27। दमन सैनी जो कि लुधियाना तो ने प्यारा जिहा शेर साढ़े नाल साझा करते हैं, लिखते हैं कि जो बीत गया वो दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा, घर फूक दिया हमने अब राख उठानी है, घर फूक दिया है हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। उदयपुर तो समाया जी लिखते हैं कि काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, काश तुम मुझे चाहो मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नज़रअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सो जाऊं बेपरवाह तेरी तरह। गोपी रेरू जो कि जलंधर तो ने साढ़े नाल एक शेर साझा करते ने, लिखते ने कि दिला की करी जाना वादू अपना मौजूद ना कर, जग मखौल उड़ाएगा तू लिख अपने तो दूर ना कर, इहो जग भैड़ा इह जग भैड़ा तू बेगाना मुखदा नूर ना कर, रह तू खुश बन के दिला होरां दी अखदा सरूर ना बन। सो ये जिहड़ा महफिल है इदां ही सजी हुई है, तो इस महफिल दे विच होर भी मतलब चार चंद लगाने लई होर प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हूँ।

0: के पट्टी तो नहीं लिख देने के, मालूम नहीं था मैं किसी के लिए रोने लगूंगी, मालूम नहीं था मैं कि किसी के लिए रोने लगूंगी, खो के खुद को किसी के ख्यालों में खोने लगूंगी। कितना बदल दिया है इस मोहब्बत ने मुझे, किसने सोचा था हर रात उसके बारे में सोचकर सोने लगूंगी। सो बिल्कुल सच कह देने के शायरी कवितावां शेर यह चीज़ होंगे ने जो साड़ा दिल बहुत डूंगाई नाल महसूस करता है, पर शायद किसी नाल सांझा करन तो झिझकदा है, हिचकचाउंदा है। इस करके लोड़ होंदी है एक ऐसे दोस्त की जो साढ़े को बैठ के साढ़े दिल दियाँ गल्लां सुने। ते रेडियो तो अच्छा है जो दोस्त कोई होर हो ही नहीं सकता। तो ये जिहड़ा दोस्त है मैनू भी तुसी मिले हो रेडियो के जरिए, तुहानू मैं मिली हाँ। सो जिहड़ा सफर सीगा अज दा बहुत ही खूबसूरत गया, बहुत वधिया लगा तुहाडे सारिआं दी दिल दीआं गल्लां पढ़ के अग्गे सुना के। मैं भी कुछ अपने लिखिया हुई शेरो शायरियां तुहाडे नाल सांझियां कीतीआं, ते जिहड़ा सफर सीगा बहुत ही प्यारा गया। तो हुण जिहड़ा समां है वह बाहली इजाजत नहीं दे रहा। सो जाण तो पहले आशा भोसले ते जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ विच एक होर प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हाँ।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: कॉल इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। धन्यवाद रक्तदाता। 14 जून 2004 को पहली बार वर्ल्ड डोनर डे मनाया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस की दुनिया भर के रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान के लिए धन्यवाद देने और रोगियों और दाताओं दोनों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का सम्मान करने का अवसर है। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदान से जुड़े आपके प्रश्न और जिज्ञासाओं का स्वागत है। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर भी हैं, पधार चुके हैं, पर सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि वो 125 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं और उनको एम्स के सेंचुरियन डोनर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। एक बहुत हस्ती बड़ी हमारे साथ है और उस बड़ी हस्ती के साथ एक बहुत बड़ा दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा की, जो चीफ रह चुके हैं जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली के, और साथ ही कई वर्षों तक आप प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में। प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स के नॉर्थ इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल में। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा का।
1: नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सेंचुरियन डोनर कैसा है, कैसा कैसे मिला आपको ये, जो आपका इतनी बड़ी उपाधि है ये?
1: ऐसा है कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज में जब एंटर ही किया तो पहले मेरे पिताजी को, फिर मेरे माताजी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी और जब ब्लड डोनेशन की बात हुई तब पहली बार शायद मैंने ब्लड डोनेशन किया। और क्योंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष के नीचे से लोगों से ब्लड नहीं लिया जाता है वेस्ट में, हालांकि शुरू हो गया कि 16-17 साल का व्यक्ति भी अगर जैसे वेस्ट की तरह है या तो उससे भी लिया जा सकता है। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और फिर मैंने ये नियम बना लिया कि साल में 4 बार मुझे ब्लड डोनेशन करना ही है। और इसलिए मेरे सब एम्स के स्टाफ के लोग भी सब जानते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन, मेरे भांजे का जन्मदिन, मेरी माताजी का जन्मदिन और मेरी पत्नी का जन्मदिन, ये 4 दिन ऐसे जो 3-3 महीने के अंतराल पे आते हैं, और उन दिनों में क्योंकि वो तारीख याद रहे। अच्छा। तो उस दिन सुबह 8 बजे, क्योंकि हम लोग ब्लड डोनेशन के बाद हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके काम भी करते हैं, ओपीडी भी करते हैं, सब काम करते हैं, तो सुबह 8 बजे ही समय रहता है, तो ब्लड बैंक स्पेशली आधा घंटा पहले उस दिन शुरू हो जाता है। फिर मेरी पत्नी का जन्मदिन 28 दिसंबर को रहता है, तो एक बार जब वो छुट्टी थी तो मैंने 1 जनवरी को दिया, तो मेरे ब्लड बैंक वालों ने ये बोला कि सर जब आपने 1 जनवरी को ब्लड दिया तो हमें खूब उस साल यूनिट मिले। तो फिर उसके बाद ये नियम मिल गया कि 1 जनवरी को वहां जाके ब्लड देना ही है।
0: तो आप जो नए साल की

0: शुरुआत करते हैं वो रक्तदान से करते हैं,
1: सुबह 8 बजे।
0: अरे वाह, क्या कहना है। और इसीलिए मैं ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इससे बेहतर हमें आज के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल सकता था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया कि कई बार अब तो शायद गिनती भी करते हैं कि गिनती करते नहीं आप।
1: एक्चुअली वो लोग करते हैं, वो मुझे बताते हैं।
0: अच्छा। तो एक बहुत अच्छा मौका है श्रोताओं, आपको अगर कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आ रहा है रक्तदान से संबंधित, रक्तदाता से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर साहब आज यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत सारे मिथ्स जो हैं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग समझते हैं। मैं आगे जब कार्यक्रम बढ़ेगा तो जरूर हमें प्रश्न भी आएंगे इस तरह के कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, रक्तदान करने से ये होता है वो होता है, तो हम चाहेंगे जरूर उन मिथ्स को आप ब्रेक करें। पर जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं तो यहाँ पे स्टूडियो में डॉक्टर साहब के सामने बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहब को, तो मुझे जो लगता है डॉक्टर साहब क्योंकि इतने फिट, हैंडसम, यंग है,
1: धन्यवाद,
0: बिकॉज ऑफ आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज यू डोनेट सो रेगुलरली,
1: दैट इज सो ट्रू एक्चुअली, ये बिल्कुल सच है। और इसके बारे में तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक मोटे तौर पर किसी को सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि एक जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ नहीं खाते पूरे दिन, लेकिन से दुनिया का मानना है कि आप कुछ नहीं खाते लेकिन आपके स्वास्थ्य में वर्धन होता है और आप फिट होते हैं और आपके बॉडी के सिस्टम बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो जब हम इसके बारे में और बात करेंगे, कुछ रक्त शरीर से निकलने से एक जो एक रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ ब्लड पे ही नहीं होती है, ब्लड तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है दोबारा, लेकिन जो पूरे बॉडी पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है, मैं ये समझता हूँ इसी तरह से है जिस तरह से आप व्रत रखते हैं और आपको स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है, इसी तरह जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जितने भी इसके स्वास्थ्य के बारे में अच्छे इफेक्ट बहुत से बताए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो सब संभव है और सत्य है।
0: तो इस एक पूरे घंटे यानी 4 बजे तक हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे स्टूडियो में, और आप रहिएगा अपने रेडियो सेट के साथ या अपने फोन के साथ, क्योंकि हम इस पर बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी लेंगे, किस तरह से डोनेट किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है और क्या कोई परेशानी होती नहीं होती। बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं प्रश्न, पर आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती हैं, मिथ्स भी होते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ और बातचीत करिए रक्तदान पर। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर आते हैं लौट कर।

जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी हाँ, रक्त सबसे अनमोल उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। पर्याप्त संख्या में स्वस्थ लोगों द्वारा नियमित रक्तदान की आवश्यकता

0: है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी और जहां भी रक्त की आवश्यकता हो वो हमेशा उपलब्ध रहे। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पर जुड़े हैं, आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, जी आप हैं रेडियो डॉक्टर में?
1: हाँ जी, नमस्कार जी आप दोनों को।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
0: जी जी
2: धन्यवाद। आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला हरियाणा से।
2: जी नमस्कार मिसेस बेदी।
1: नमस्कार जी,
0: आप कुछ पूछना भी चाहती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और सही कहा आपने,
1: बधाई के पात्र हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं हूँ डायबिटिक 32 साल से
2: जी,
1: और 25 साल से मैं योगा में हूँ
2: जी,
1: वहाँ की हेड हूँ। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि डायबिटिक का ब्लड डायबिटिक को भी क्यों नहीं दे सकते।
2: तो डायबिटीज में ना आपको बहुत सारी इन्फेक्शंस का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी भावना को भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा एक बेसिक जो रूल है, कभी भी हम कोई भी चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो है कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन का रिस्क या किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, किसी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये रहता है कि कई बार जो है वो डायबिटिक्स बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं, अगर आपको बहुत सारी मेडिसिंस मिल रही हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो वो सब चीज़ें हैं जिसको वो ब्लड देते हैं उसके लिए कुछ नुकसान पहुँचाने का पोटेंशियल रखती हैं। तो उस सेफ्टी को देखते हुए ये नियम कड़ा रखना पड़ता है।
1: मेरा बहुत दिल करता था, मैं कॉलेज टाइम में ब्लड दिया हुआ है, मेरे ब्रदर रेगुलर डोनर रहे हैं, हस्बैंड भी देते रहे हैं, पर मेरे को मन में ये रहता है, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा ये करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत
2: जी। मैं आपसे यही कहने वाला था मिसेज बेदी कि आप इस कार्यक्रम में फिर भी एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, आप
1: तो उनको
2: जी, वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर ऑल हमारे दी हुई एक यूनिट से तो पूरा काम नहीं चलता, लेकिन जो लोग मोटिवेट होते हैं और जो लोग और देते हैं उसी से ही देश का और समाज का और दुनिया का भला हो सकता है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप एक्चुअली मुझसे ज्यादा बधाई की पात्र है, क्योंकि मेरी बात तो एक व्यक्ति की बात है और आप जो है इतने लोगों से डोनेट कराती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे वही है कि स्टूडेंट से टीचर जो है वो ज्यादा महान होता है।
1: तो इस तरह से कहती हूं कि देखो, हम अगर हमें ब्लड की जरूरत है, हम चाहते हैं हमें फटाफट ब्लड मिल जाए, पर जब हमें देने की बारी आती है हम क्यों पीछे।
2: और वो खेत में नहीं उगता, पेड़ पे नहीं लगता, बना नहीं सकते, तो फिर देना ही पड़ेगा।
1: मैं
2: जी।
1: तो डांट
0: बहुत
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गोल्ड मेडल के हकदार
0: जी बिल्कुल, और ये गोल्ड मेडल हमने आपको भी दिया आकाशवाणी की तरफ से, रेनबो की टीम की तरफ से, क्योंकि मिसेस बेदी आप भी एक बहुत बड़ी जो मोटिवेशन का काम कर रही हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है आपने, और इसी तरह से आप जैसे लोग कुछ और हो जाएं हमारे अगर समाज में, तो जो ये समस्या है कि रक्त नहीं मिलता है समय पर, वो समस्या ना आए किसी को।
1: मेरी कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरे मदर को एक बार ब्लड की जरूरत थी, तो हमने 4 डोनर बुलाए, उनको लकीली चढ़ानी ब्लड, हमने वो सारा ब्लड डोनेशन में दे दिया। वो कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे ले लो, नहीं, दान है ये, बहुत बड़ा दान है,
0: बहुत बड़ा दान है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन पे जुड़ने के लिए और इतनी इतनी प्रेरणादायक बातें करने के लिए। हमारे बहुत सारे श्रोता इंस्पायर हो रहे होंगे आपसे आज।
1: डॉक्टर आपको सलाम है मेरा।
2: नमस्कार जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि जैसे ये बता रहे हैं मिसेस बेदी की ये डायबिटिक है, ये ब्लड नहीं दे पाती है, तो इस तरह के और कौन सी लोग हैं जिन जो लिमिटेड है, नहीं दे सकते हैं, कोमोर्बिडिटीज हैं
2: जी? सबसे पहली तो एनीमिया है, अगर आप में ही खून की कमी है तो
0: जी।
2: इसी तरह से किसी का भी रक्त लेने से पहले उसका कुछ फिटनेस स्टैंडर्ड होता है।
0: अच्छा।
2: जैसे कि वेट जो है, वेट आपका एक बिल्कुल लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए। 50 किलो या 45 किलो अलग अलग ब्लड बैंक रखते हैं, 50 किलो सेफ है, तो इतना आपको होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 13 ग्राम होना चाहिए। और आप किसी तरह की बीमारी जो किसी तरह से भी रक्त जिसको दिया जाता है उसको इन्फेक्शन उससे हो सके, जैसे कि हेपेटाइटिस है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, या किसी को HIV की इन्फेक्शन है, या किसी को कोई कैंसर है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हमें कारण पता नहीं लगा है, तो ऐसी बीमारी भी

0: हत्या कभी ना कभी ऐसा पता लगे भविष्य में कि वो इन्फेक्शियस हो सकती है. तो ऐसी सब बीमारियां जिनमें कि किसी को भी प्राप्त करने वाले को किसी तरह का भी जोखिम हो सकता है, उन लोगों को हम लोग मना करते हैं. इसी तरह एक एज भी आप पूछेंगे जरूर
1: जी.
0: तो 65 साल उम्र नॉर्मली रखी जाती है, लेकिन कई कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां लोग फिट होते हैं वो 70 तक भी देते हैं, कई देशों में ये 60 तक ही है. पर 65 एक मैं समझता हूँ इसका ठीक एक बैलेंस्ड एक फिगर है कि 65 साल की एज तक आप ब्लड दे सकते हैं.
1: तो डॉक्टर साहब, जब कोई ब्लड डोनेशन करने की इच्छा जाहिर करता है, जाता है डोनेशन के लिए, तो क्या ये सारी चीजों का टेस्ट पहले किया
0: जाता है? बिल्कुल बिल्कुल. उनका आपका आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, इनफैक्ट जो क्वेश्चनियर भरने को बोला जाता है, जो प्रश्नावली होती है आपके लिए, उसमें ये भी पूछा जाता है कि आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया, आपने नाश्ता किया कि नहीं किया. जवान लोग होते कई बार बहादुर बहुत होते हैं कि बोलते नहीं हम सुबह नाश्ता नहीं किया, चल दिए देर हो रही है कि हम रास्ते में ब्लड देते हुए जाएंगे. तो वो ऐसा काम भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप रात में ठीक से सोए, क्या आपने ठीक से खाना खाया, क्या आपको कुछ दिन पहले खांसी जुकाम हुआ है. तो खांसी जुकाम भी जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसमें आप डोनेट नहीं कर सकते. क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपका उस समय ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, बहुत लो है दवाओं की वजह से, तो ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है आपका. और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों की सेफ्टी जरूरी है. आप एक व्यक्ति का नुकसान करके दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकते. आपका देने वाले का चाहे जितना मर्जी अच्छा इमोशन हो, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो कई बार हमें उन्हें मना करना पड़ता
1: है. जी. हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब. हेलो.
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम जी को शालीनता के साथ रघुविंदर सिंह चड्ढा का नमस्कार.
1: नमस्कार चड्ढा जी, स्वागत है कार्यक्रम में. जी प्रश्न कर.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार चड्ढा साहब.
2: डॉक्टर साहब, आज मैं आपको बधाई नहीं दूंगा क्योंकि जब पिछली बार आप आए थे तो आपने कहा था मेरे को बहुत बधाई होगी, अब मुझे बधाई की जरूरत नहीं है.
0: शुभकामनाओं की हमेशा जरूरत रहती है जी. बधाई बधाई ऐसा है कि जो काम अपने कर्तव्य की तरह किया जाता है उसके लिए बधाई में थोड़ा सा, मैंने पिछली बारी मुझे याद है आपको यही बताया था कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है. तो इतना सारा बधाई ऐसे लगता है कि कोई ऐसा कुछ काम किया जो बहुत ही विशेष है, मुझे नहीं लगता. मुझे ये लगता है कि ये कर्तव्य है और कर्तव्य करने के लिए इतनी ज्यादा बधाई मिलना थोड़ा सा एम्बेरसिंग है.
1: तो आप आज क्या कहना चाह रहे
2: हैं? मेरा पहला प्रश्न से पहले मैं ये कहूंगा, रक्तदान मीन्स वक्त दान. अगर हम अपना रक्तदान करते हैं तो हम किसी का जीवन आगे बढ़ाते हैं
0: जी.
2: और मेरा क्वेश्चन ये है कि रक्तदान करने से कितने टाइम पहले हमको कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए?
0: अगर कोई नॉर्मल जैसे आप मेडिसिन कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की लेते हैं वो तो आपको लेते रहना है. अगर आप कोई ऐसे लेते हैं जैसे कोई नींद की दवाई लेते हैं या इस तरह की दवाई लेते हैं तो उनको कम से कम 24 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए. पर ये अलग अलग दवाओं के लिए ये अवधि अलग अलग होती है. पर अगर आप वैसे भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर ले रहे हैं तो आपको रक्तदान ही नहीं करना चाहिए. लेकिन कोई ऐसी दवाई है जो आप नॉर्मली लेते हैं जैसे थायराइड की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, तो वो आपको वैसे भी लेनी ही चाहिए. रक्तदान देने के लिए आपको उनको बंद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ज्यादातर ये बात जो है ना वो ऐसी चीजों के लिए आती है कि अगर कोई नींद की दवाई लेता है कुछ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां लेते हैं जैसे कि आप ब्लड थिनर लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ब्लड डोनेशन वैसे ही अलाउड नहीं है. तो आप हार्ट प्रॉब्लम है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते. या आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हें बंद करें, क्योंकि उनसे जो होने वाला रिस्क है वो आपको आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है. तो आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप जब ब्लड बैंक जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई दवाई आपने पिछले 24 घंटे में ली है या कोई और दवा है जो आप रेगुलरली लेते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड सवाल तो लिखे ही होते हैं. अगर आपको मलेरिया डेंगू भी हुआ है तो भी उसकी हिस्ट्री में अगर आप है तो आपसे ब्लड नहीं लिया जाता है. तो अगर किसी बीमारी के लिए शॉर्ट टर्म आप दवा ले रहे हैं तो आपको वैसे ही उसके पूरा रिकवर होने के बाद ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है. जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं उस पे बेसिस पे आपके ब्लड बैंक वाले डिसीजन ले लेंगे कि उस समय लेना ठीक है कि आपको फिर दोबारा अगर बुलाया जाए तो. पर ज़्यादातर जो अगर क्रॉनिक डिसीजन हैं जिनमें बहुत दवाई लगातार लेनी पड़ती है उसमें ज़्यादातर में फिटनेस का इशू रहता ही है थोड़ा बहुत. तो इसलिए आप पता कर लें और ज्ञान रखें इस बात का, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में बताया जाएगा कि मैंने कुछ बहुत सी बीमारियों के बारे में

0: बताया, अगर दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आपको डोनेशन नहीं करना, लेकिन आप कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं जैसे मिसेज बेदी कर रही है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी हम बता दें अपने श्रोताओं को कि आज जितने भी गाने बज रहे हैं वो आपकी पसंद के हैं, आपने खासतौर पर ये लिस्ट तैयार कराई है गानों की प्लेलिस्ट जो कि, और जो अब अगला गाना जो बजने वाला है उसके उस गाने के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे मैं श्रोताओं को
0: जी,
1: ये तो कितनी अच्छी है गाना
0: जी, जी। मेरी माता जी का ये हमेशा से हमें संस्कार रहे कि हमेशा मदद करो, कमजोर की मदद करो, गरीब की मदद करो। कभी अगर हम हरिद्वार जाते थे तो वो देख के किसी कहती थी इसने खाना नहीं खाया, किसी ने अगर आके बोला खाना नहीं खाया तो बोलेंगे इसको खाना खिलाओ, अगर किसी को बोला कि कभी बोलती थी इन सबको चाय पिला दो, तो उनको ये बड़ा दुखदायी लगता था कि कोई भूखा रहे, उन्हें बड़ा दुखदायी लगता था कि किसी को ठंड लग रही है कुछ है। तो एक जो ये इस तरह का जो प्रभाव हमारे चरित्र पे हम तीनों भाई बहनों के पड़ा वो माताजी के इन्फ्लुएंस से पड़ा, तो मुझे लगा कि आज जब हम दान की बात कर रहे हैं और आज हम लोग भी माता पिता हैं, श्रोताओं में बहुत सारे भी माता पिता होंगे, तो हम भी अपने बच्चों को प्रेरणा कर सकते हैं जिस तरह से सौभाग्य से हमें प्रेरणा मिली, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए क्योंकि उन्हीं ने ये संस्कार हमें दिए, मैं चाहता था ये गाना।
1: आप उन्होंने एक ऐसा बेटा और बहुत सारे ऐसे आपके जो भाई बहन जो आप बता रहे हैं जो सब इसी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह के बच्चे इस दुनिया में लाए जो बाकी लोगों की मदद करें। मैं देख रही हूँ भावुक हो रहे हैं डॉक्टर साहब इस समय और अपनी माता जी को याद कर रहे हैं, हम सबकी ओर से भी उनको नमन। सुन लेते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, बहुत प्यारी होती है माँ, और वो माँ जो संस्कार देती है अपने बच्चों को, और सही संस्कार सही लालन पालन से ही एक इंसान बनता है जो दूसरे के दर्द में दर्द महसूस करता है, और उसी के दिल में सच्चा दिल होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। और ऐसे ही एक शख्स, ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप चीफ रह चुके हैं JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स नई दिल्ली में, साथ ही साथ कई वर्षों तक आप प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में, और अभी प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स नॉर्थ इंडिया अपोलो हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कई बार ब्लड दे चुके हैं, यानी जितनी बार मैक्सिमम पॉसिबल है मैं यही कहूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि साल में 4 बार ही दे सकते हैं, वो 4 बार देते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं मैसेज के माध्यम से, हमारे एक श्रोता फोन पर भी वेट कर रहे हैं। आप बताइए, पहले फोन लूं कि पहले मैसेज लूं?
1: फोन वाले के पहले बात कर लेते हैं।
0: कर लेते हैं, चलिए जैसा आप कहें। हेलो,
2: रेडियो डॉक्टर की आन बान शान शालिनी मैम को बेहद शालीनता से नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको,
2: और ब्लड डोनर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं ब्लड डोनर राजेंद्र करमपुरा से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है। सवाल तो मेरा ये है कि मतलब जब हमें ब्लड देना है तो क्या खाली पेट भी ब्लड दिया जा सकता है, जब फास्ट रखते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है
1: जी।
2: और दूसरा सवाल ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते में या महीने में या फिर साल में कितनी मर्तबा ब्लड डोनेट कर सकता है या उसे करना चाहिए? सुझाव मेरा ये है सर प्लीज, क्योंकि एफएमरे में पूरा हिंदुस्तान सुनता है, अभी नहीं हमारे जितने बॉडी पार्ट्स है जो डोनेट किए जा सकते हैं हमें वो सब डोनेट करने चाहिए। और इस मामले में सरकार को, एनजीओ को, जो भी संस्थाएं हैं बिजनेस, उनको कुछ इसको कोई पुरस्कार कोई इनाम वनाम रखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है
1: जी। बहुत अच्छी बातें कही आपने। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ये जो चीज है ये टेक्निकल है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी तरह का होने का अगर आप मिल जी, आप बहुत बहादुर हैं और आप खाली पेट दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी अगर आपको खाली पेट ब्लड देने से कुछ समस्या होती है तो उसमें पूरे कार्यक्रम को नुकसान पहुंचता है। लोगों को ऐसा लगता है जी कि उन्होंने ब्लड दिया वो उनके साथ उनको घबराहट हो गई या कुछ हो गया, तो बल्कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको हम कुछ खिला के, बिस्किट या उनको कुछ जूस वाला ड्रिंक

0: फ्रूट वाला ड्रिंक पिला के, पानी पिला के तभी भेजते हैं, और उनको कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं उनकी, और उनसे पूछा जाता है कि आप ठीक फील कर रहे हैं, तभी उनको भेजते हैं। तो इस तरह की तो सुझाव मैं आपको नहीं दूंगा कि आपको खाली पेट ब्लड देना चाहिए आपको, बल्कि प्रॉपरली नाश्ता करके और तब खाना खा के तब डोनेशन करना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, 3-3 महीने के अंतराल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कोई आप डेट 3-3 महीने बाद वाली जो आपको याद रहती हो, ऐसा आप कर सकते हैं। और जो आपका सुझाव है बहुत अच्छा है। हमारा एम्स का जो जहां मैंने 44 साल में रहा, वहां पे नियमित रूप से ब्लड डोनर्स को, खास करके जो लोग नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते हैं, उनको बुला के उनका सम्मान किया जाता है। पुरस्कार कोई राशि वाली बात इसमें नहीं होती है, लेकिन एक दूसरों को इससे इंस्पिरेशन मिले और इस पर्पस से किया जाता है। तो उसमें जो सेंचुरियन डोनर्स हैं उनको शील्ड भी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। या सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे ये कहा जाता है कि आप 2 शब्द कहें कि आपको, जैसे शालिनी जी ने आज मुझे बार बार पूछा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, और मिसेज बेदी से कहा कि आप कैसे लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में जागरूकता हो, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों। हमारे यंग जो है, हमारे युवा है, वो भी एक हमारा इसमें एक उद्देश्य रहता है कि वो इस कार्यक्रम में आ गया है। और आपको जैसे शालिनी जी ने बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर का प्रमुख था, और कई बार ऐसा होता था कि एक जवान आदमी एक्सीडेंट के साथ आया तो उसको 20 25 30 बोतल ब्लड भी चढ़ जाता था, और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता था, या हम किसी अटेंडेंट को ढूंढते भी नहीं थे कि कोई ब्लड देने आएगा तो हम इसको ब्लड देंगे। तो उसी को देख के समय समय पर हम कभी लायंस क्लब के साथ, कभी दूसरे क्लब के साथ जब कैंप करते थे, CRPF वाले, CISF वाले, BSF वाले, कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस रेगुलरली नियमित रूप से एम्स में आके ब्लड डोनेशन करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं, रोटेरियंस है। तो बहुत सारे लोग जो है, कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं कि आपको एकदम एक ऐसी फीलिंग आती है कि कितना लोग तत्पर हैं एक जान बचाने के लिए दूसरों की, और एक बहुत ही अच्छी खुशी की अनुभूति होती है। और ये सब बधाई के पात्र है, और उनका पुरस्कार उस खुशी में ही है कि उनके ब्लड से किसी की जान बच गई, लेकिन अक्सर ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: जी जी, और मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी जो उन्होंने कहा कि ऑर्गन डोनेशन की भी बात होनी चाहिए। तो हम ऑर्गन डोनेशन पर भी कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर ये बात कहते रहते हैं कि किस तरह से हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने डॉक्टर साहब और बोली कि FM रेनबो को पूरे भारत में सुना जा रहा है, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सुना जाता है, ग्लोबल है हमारा, क्योंकि आप इसको सिर्फ 102.6 पर ही नहीं सुन रहे हैं, आप इसे प्रसार भारती ऐप, न्यूज AIR पर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज इसको अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारे यानी आकाशवाणी के जितने भी चैनल हैं, सिर्फ FM रेनबो दिल्ली ही नहीं, जितने भी चैनल हैं आप उनको सुन सकते हैं और उनसे इसी तरह से प्रेरणा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम ना सिर्फ जानकारी देते हैं, ना सिर्फ सूचना देते हैं, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, ये सारे पैकेज, कंप्लीट पैकेज होता है। बहुत सारे श्रोता है जो सर जुड़ गए हैं हमारे साथ मैसेज के माध्यम से, और सारे के सारे यही लिख रहे हैं कि वो आज इंस्पायर हो चुके हैं और कोई तो डोनेट करने आज ही जा रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूं, एक तो ये प्रवीण गुवाहाटी से लिख रहे हैं कि कैन आई डोनेट ब्लड, आई एम 71 इयर्स ओल्ड।
0: जी प्रवीण जी, थोड़ा देर हो गई है, 71 साल की उम्र में आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। वो कई बार हम लोग 80 साल के व्यक्ति का भी हड्डियों का ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि जैसे वो 40 साल का हो और उसको उतना ही उससे काम लेना है, लेकिन ये जो नियम है, लॉ है, ये काफ़ी, और गाइडलाइंस है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाख या 1 करोड़ या पूरी समाज की, पूरी दुनिया का भी फायदा करके हमें ये लिबर्टी नहीं मिलती है कि एक भी व्यक्ति का किसी तरह से नुकसान हो। और ये सब नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इसमें सेफ्टी जो है वो पूर्णतया सुरक्षित वो रहे,
1: किसी और को नुकसान न पहुंचे।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन मुझे ये लगता है इनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं कि ये आज का कार्यक्रम सुन के मोटिवेट हुए और चाहते हैं डोनेट करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बेटे को या

0: घर में बहू को, अपनी बेटी को मोटिवेट कर सकते हैं डोनेट करवाने के लिए ब्लड। और चंद्र प्रकाश जी हमें लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, ब्लड डोनेशन के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब, और किस एज तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: सो 18 से 65 साल की आयु तक के स्वस्थ व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट रक्तदान कर सकते हैं। और जो कट ऑफ है, जिसको हम कहते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो स्त्रियों में 12 ग्राम कम से कम होना चाहिए और पुरुषों में 13 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप सेफली पूरे सुरक्षा से ब्लड डोनेशन रक्तदान कर सकते हैं।
0: उमेश कुमार जी लिख रहे हैं खयाला से, नमस्ते, एक आदमी एक टाइम में कितना ब्लड डोनेट कर सकता है और इसकी पूर्ति कितने दिनों में हो सकती है, क्या इससे कमजोरी आती है?
1: जी, तो बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे। अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 350 ml है, और मैं आपको बता दूं कि इंसान के शरीर में करीब करीब 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ब्लड रहता है, और क्योंकि फिगर 10% से कम है तो इसमें 350 ml किसी भी 60 किलो के व्यक्ति को देने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जो उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें हमारे रक्त में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा रहता है और एक सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो तो 48 घंटे में पूरा हो जाता है, और इसलिए कोई वॉल्यूम की 24 से 48 घंटे के अंदर ही वॉल्यूम की कमी तो हो जाती है पूरी। जो सेल्स होती है वो 4 से 6 हफ्ते लेती है, और इसलिए सेफ्टी के लिए आपको डबल इंटरवल दिया जाता है कि आप 3 महीने अच्छा। बाद आके दोबारा ब्लड दे सकते हैं। और जहां तक कमजोरी की बात है, तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग और भी जिनको मैं जानता हूं जो बहुत बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो हम लोग सुबह ऐसा भी रहा है कि सुबह 8 बजे ब्लड डोनेट करके पूरे दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किए। आप बिल्कुल सामान्य रूप से अपनी सामान्य जो आपका दिनचर्या है उसका पालन कर सकते हैं बिना किसी कमजोरी को महसूस किए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैंने आपसे कहा कि जैसे पहले एक श्रोता ने कहा कि खाली पेट ब्लड दे दे, या रात को सोए नहीं है, या ठीक से खाना नहीं खाया है ठीक से, तो वो सब चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक स्वस्थ तरीके से एक दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सिस्टम है, जो ब्लड बैंक की फैसिलिटी है, उसको इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हो, बल्कि जैसा कि अभी हम शायद, मुझे पता है कि शालिनी जी जरूर बात करेंगी, उसका फायदा जरूर होता है आपको, आपको शारीरिक रूप से भी फायदा होता है, आपको जो अच्छा लगता है या आपकी मानसिकता में पॉजिटिविटी आती है और आपको ये फीलिंग आती है, आपके दिल को अच्छा लगता है कि आपने किसी की जान बचाई। और कभी आपको देखना हो तो आप देखें किस तरह इमरजेंसी में, हमारी इमरजेंसी में, ट्रॉमा सेंटर में या बाकी इमरजेंसीज में किस तरह से आपका दिए हुए रक्त से लोगों की जान बचती है और लोगों के परिवार बचते हैं, जिसमें एक युवा व्यक्ति किसी की जान जा रही हो या किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए ऑपरेशन होना, जिससे उसकी जान बचती है, और वो पूरे परिवार पे आपका जो है वो एहसान रहता है, वो आपके लिए आभारी रहते हैं आपके, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पूरा काम कर सकते हैं, स्वस्थ फील करेंगे और कुछ इसमें कमजोरी नहीं होती।
0: जी, और डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि मानसिक रूप से एक बहुत संतुष्टि मिलती है, एक कि हमने किसी की मदद की, एक नेगेटिविटी जो आपके अराउंड चारों तरफ रहती है आज के टाइम में वो शायद कहीं ना कहीं कम भी होती है, लेकिन फिजिकल, मैंने सुना है कि फिजिकल भी फायदा होता है एक डोनर को कि नए ब्लड सेल्स बनते हैं और उसके कारण शायद हार्ट अटैक की समस्या कम हो सकती है, ये मैंने सुना है। आप एज अ स्पेशलिस्ट बताएं।
1: बिल्कुल, मैंने इसीलिए इसमें एक संदर्भ शुरू में किया था, एक कंटेक्स्ट सेट किया था कि एक जब आप फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत एविडेंस है कि जब आप व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस होती हैं जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, हालांकि आपने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरह से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, और कुछ स्टडीज में ये कहा गया है कि हार्ट अटैक की संभावना 88% तक कम हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को इससे फायदा होता है, आपकी स्किन की से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी बीमारियों में फर्क पड़ता है, इसमें आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ावा होता है। और एक और ऐसी बात होती है, देखिए हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सारे पॉइजन्स को बॉडी से निकालता है, और जब लिवर में बहुत सारा आयरन अगर इकट्ठा हो जाए तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेसिटी को कम कर देता है। जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें

0: एक्स्ट्रा आयरन उसमें से जो है वो निकल जाता है, तो लिवर की भी डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्षमता है उसमें से जो आपके जिसको हम एक्चुअली पॉइजन ही कहते हैं, विषयुक्त जो भी केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिन्स हैं जिनको बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, उनको साफ करने की, रक्त को साफ करने की क्षमता लिवर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कुछ फायदे हैं, पूरे मैं शायद गिनाऊंगा तो कार्यक्रम ही
1: समय ही खत्म हो जाएगा।
0: जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान नहीं होता और बहुत सारे फायदे आपके शरीर को मिलते हैं।
1: बहुत सारे आपने गिनाए, तो हमारे मन में जो कई हमारे श्रोताओं के मन में ये जो मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए वो खत्म हुए होंगे कि आप सिर्फ दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य वृद्धि भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, कीवी किचवाहा में लिख रही हैं, दिल्ली में रहती हैं, 19 साल की हैं, लिख रही हैं, एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड टू डोनेट ब्लड बट माई एज वॉज नॉट अलाउंग मी टू डोनेट अर्लियर, सो नाउ आई एम एलिजिबल टू डोनेट। तो मुझे कुछ बताएं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक, वेयर शुड आई डोनेट, where I have to register

0: डॉक्टर साहब, कीवी किचवाहा में लिख रही हैं, दिल्ली में रहती हैं, 19 साल की हैं, लिख रही हैं, एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड टू डोनेट ब्लड बट माय एज वाज नॉट अलाउंग मी टू डोनेट अर्लियर, सो नाउ आई एम एलिजिबल टू डोनेट. तो मुझे कुछ बताएं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक, वेयर शुड आई डोनेट, वेयर आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन डोनेट. तो हाउ मेनी टाइम्स आप बता चुके हैं प्रिकॉशंस, और ये कहाँ रजिस्टर हो सकते हैं?
1: कहीं भी रजिस्टर हो सकती है, आपको कोई रजिस्टर करने की जरूरत भी नहीं है. आप किसी भी अपने मन पसंद, ऐसा है कि अगर कोई ऐसी डिस्पेंस, ऐसी कोई हॉस्पिटल है जहां से आपका कोई सगा संबंधी इलाज करा के ठीक हुआ है, आपको कोई हॉस्पिटल है जहां जो आपके घर के पास है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, और जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें भी इनफैक्ट बहुत सारे जो ब्लड बैंक है, जिस तरह हमारा जो एम्स का ब्लड बैंक भी है, हमारे बहुत ही वहाँ पे कर्मठ मेरे सहयोगी जो रहे हैं वहाँ हैं, तो हमारी मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन्स भी जाती हैं, दूर दराज इलाकों में जाती हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गाँव में या सबर्बन एरियाज में. और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सब लोग सुन रहे हैं, तो गांव के सरपंच जो है वो अगर एक निवेदन करे अपने एरिया के कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, तो वहां चलता फिरता ब्लड बैंक वहां भी आ सकता है, और वहां पूरे दिन सुबह से शाम तक अगर कुछ जो देना चाहे. तो अगर आप ब्लड देना चाहते हैं, दान देने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आपके लिए हजारों संभावनाएं हैं. कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक में चले जाएं, रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपकी डिटेल वो वैसे भी नोट करते हैं और वो आपके डेटा बैंक में है, पर अभी भी ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है जहाँ पे समय समय पर फोन पर आपको प्रॉम्प्ट दे के या SMS दे के या उसके द्वारा याद दिलाया जाए. ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्राइवेट लैब्स हैं, वो आपको फोन करती रहती है कि आपका अब हेल्थ टेस्ट ड्यू है, आप आ जाइए. मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको समय समय पर ऐसा मैसेज आए कि आप क्या आप डोनेट करना चाहें.
0: जी बिल्कुल सही बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब. एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आपकी ही पसंद का एक और गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेज है, हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं. तो ये गीत सुन लेते हैं और कहीं जाना नहीं है, आपको रहना है रेडियो डॉक्टर में. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी मैं लूंगी मैसेज, क्योंकि लगभग वही बातें हैं, पर जो भी जहां भी आप बताना चाहें जरूर बताएं। यशपाल लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू शालिनी मैम एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर मल्होत्रा, सैल्यूट टू यू डॉक्टर मल्होत्रा फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फैक्ट इन इंडिया अबाउट एक्चुअल ब्लड रिक्वायरमेंट एंड ब्लड डोनेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट?
1: तो जैसे कि है, इतना बड़ा देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी जितनी हमें जरूरत है उससे अभी हमें आपूर्ति नहीं हो पाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनुअली प्रतिवर्ष हमें करीब 15 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन ब्लड की जरूरत पड़ती है, और लगभग 12 लाख के करीब जो है वो डोनेशन होते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे डोनेशन है, देखिए डोनेशन दो तरह से होती है, एक तो वॉलंटरी डोनेशन होती है, कैंप्स के थ्रू होती है, या लोग वैसे ही जाके डोनेट करते हैं कि मेरा मन करता है, मुझे अच्छा करने का मन है। दूसरा ये है कि आपका कोई रिश्तेदार भर्ती है और उसका ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए जो आप उनके लिए जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन है। तो ये सब तरह की डोनेशन मिला के भी अभी आपूर्ति नहीं हो पाती है। और जैसे मैंने कई बार कहा कि कई बार एक जान बचाने के लिए 40 45 50 यूनिट ब्लड भी लगता है, तो इसलिए अभी हमें और वॉलंटरी डोनेशन की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हर मैसेज में आपके लिए तारीफ है, हर मैसेज में है, और सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हमारा प्रणाम पहुंचाइए, हमारा नमस्कार पहुंचाइए, पर एक जो मैसेज आया जो मुझे अभी दिखा है वो मेरी तारीफ भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ क्या?
1: जी जरूर।
0: आपकी इजाजत डियर रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी, सादर प्रणाम। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रोड्यूसर है ना? जी हाँ बिल्कुल हूँ, सही आपने पहचाना। पहली बार शायद आपकी खूबसूरत दिलकश आवाज सुन रहा हूँ, और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी के बारे में जानकर मैं भी ब्लड देने के लिए प्रेरित हो गया हूँ। मैं आज शाम ही ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं, मैं कभी ब्लड डोनेट अभी तक नहीं किया हूं, तो बहुत अच्छी बात ये इन्होंने लिखकर भेजी है। मोहम्मद सरफराज आलम हैं, जो कि हार्ट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से, सर आपकी निस्वार्थ जनसेवा के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न दीर्घायु की शुभकामनाएं। कृपया बताएं कि किस उम्र तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है?
1: 18 से 65 साल की उम्र तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है।
0: जी सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मेरी उम्र 43 इयर्स है और हर साल मैं ब्लड डोनेट करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ऊपर नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? आप पिछले साल भी आए थे, हमने आपको सुनकर, हम आपकी बातें सुनकर बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं।
1: जी तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो पुरुष है उसका अगर हीमोग्लोबिन 12 है तो एक बार आप जांच जरूर कराएं डॉक्टर से कि अगर आयरन की कमी है तो आयरन की कमी आपको, या फोलिक एसिड की या B12 विटामिन की कमी है तो वो सब आपको कैप्सूल और दवा के थ्रू भी कंप्लीट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप नेचुरल चाहते हैं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि सेब और चुकंदर के सेवन से भी आपको इस चीज़ से आपको मिल सकता है इससे जो, और जो हमारा रक्त है उसमें बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से और प्रोटीन से बनता है, तो नेचुरली अगर आपकी डाइट ठीक है। कई बार गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनको क्रॉनिक, एक तो उनको ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसका कि हमें कारण नहीं पता, लेकिन अक्सर उनका हीमोग्लोबिन 8-9 से ऊपर जाता ही नहीं है। इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर जाता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कई बार हमें ब्लड निकालना पड़ता है क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा उनके अंदर बॉडी के अंदर आयरन जमा हो रहा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन 12 पे तो ब्लड आपका लेना मुश्किल होगा, कम से कम उसको 13 तक लाएं तभी हम ब्लड दे पाएं।
0: जी जी। और ये लगभग ऐसा ही आपने जो बताया आर्थराइटिस है इनको 14 वर्ष से। राजू कुमार आजमगढ़ से लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि मुझे आर्थराइटिस है 14 वर्ष से, और क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ?
1: नहीं, आपको दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, आप इसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। कोई भी क्रॉनिक डिसीज जो होती है उसमें एनीमिया अपने आप ही हो जाता है, जिसको कि हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए देना मुश्किल होता है।
0: जी मैसेजेस बहुत हैं, पर हमारे एक श्रोता काफी देर से फोन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी मेरा एक सवाल था, जो कहते हैं 40 की उम्र के बाद ब्लड कम बनता है।
1: जी ऐसी कोई बात नहीं है, 40 तो एकदम युवा अवस्था होती है, 40 में तो 18 घंटे काम करने की उम्र होती है। जो ब्लड कम बनता है एज के साथ में उसमें ज्यादा

0: अधिकतर जो मैंने जैसे बताया कि सामान्य सीमा जो है 65 साल ली जाती है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, 65 साल से पहले के अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप बेधड़क रक्तदान कर सकते हैं।
1: जी, मनोहर लाल गांधी जी लिख रहे हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, उम्र 60 के बाद क्या हम रक्तदान कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर साहब बता चुके हैं, रक्तदान करने के बाद हम डाइट में क्या ले सकते हैं? अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जब आपको ब्लड ग्रुप मैच करने की तब आवश्यकता होती है जब कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए ब्लड दे रहे हैं, लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें अगर वो रक्त जो है उसके अंदर किसी तरह की रोग के चिन्ह नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसके लिए हमेशा हमें कोई ना कोई जो रिसिपिएंट मिल जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम रक्त जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, उसको मैच करके डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारे पास बैंक का मतलब यह है कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको अगर 200 रुपए के नोट चाहिए कि 100 के नोट चाहिए कि 50 के चाहिए, आपको वहां से मिल जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ब्लड बैंक है उसमें हर तरह का ब्लड रहता है, तो आप जैसे लोग जब दान करते हैं तो हम उसको ग्रुप करके रख लेते हैं और जब किसी को उस व्यक्ति को उस ग्रुप की ब्लड की जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। तो इसलिए आपको इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दान करें और जैसा कि कहा जाता है दान करें और भूल जाएं, कभी ना देखें कि आपका दान जो है उस दिए हुए से दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है, नाम नहीं लिखा है पर वो लिख रहे हैं कि मैं ओ पॉजिटिव हूं, तो क्या इससे ब्लड ग्रुप से भी कोई फर्क पड़ता है दान पे?
0: जी, कोई ब्लड ग्रुप नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि जिसका भी ब्लड ग्रुप रेयर होता है वो हमारे लिए बहुत ही VIP होता है, क्योंकि जब उस ग्रुप के व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो रेयर ब्लड ग्रुप है तो उसको मैचिंग ब्लड ग्रुप मुश्किल से मिलता है। तो ओ पॉजिटिव तो मेरा भी ग्रुप है और
1: यूनिवर्सल
0: डोनर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जरूर दें।
1: सुमित लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से कि मैं 31 इयर्स का हूं और मैं आई एम पेशेंट ऑफ क्लॉट इन माय ब्रेन एंड हाई BP, तो क्या मैं रिकवरी के बाद ब्लड डोनेट कर सकता हूं और क्या ब्लड थिनर मेडिसिन इफेक्ट करती है ब्लड डोनेशन?
0: जी बिल्कुल, ब्लड थिनर पे अगर आप हैं तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे इन्होंने बीमारी के बारे में, कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आप अस्थायी रूप से अनफिट हो जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, जैसे आपको खांसी जुकाम है, आपको कुछ इन्फेक्शन हो गई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, उससे जब आप रिकवर करते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रॉनिक बीमारी जैसे मैंने आपको कहा उसमें रख देना जो अच्छी बात है।
1: जी डॉक्टर साहब, शिवम हमें लिख रहे हैं कनेक्टेड फ्रॉम आर्चिन जर्मनी, और ये लिख रहे हैं कि मैं 28 इयर्स का हूं और माय क्वेरी इज सी अबाउट प्रिकॉशंस एंड स्टेरिलाइजेशन मेजर्स वन शुड चेक बिफोर डोनेटिंग ब्लड ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो।
0: तो ब्लड बैंक्स जो है वो बड़ी ही रिप्यूटेड संस्थाएं हैं और उनके रेगुलर चेक होते हैं और उनके स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग होती है और बहुत ऑडिटिंग होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं आज की डेट में ब्लड डोनेशन करने जाएंगे वहाँ स्टैंडर्ड्स की कोई इशू है, क्योंकि सब डिस्पोजेबल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं और एजेंसीज हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रेगुलरली इस चीज को एश्योर करती है, और जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे उस पर देखा जाता है, जो कि बहुत ही वैसे इंसिडेंट होना बहुत ही रेयर है आपको बता दूं, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बहुत प्रायोरिटी होती है कि ब्लड देने वाले की सुरक्षा, हमारे लिए ब्लड जिसको मिलना है उससे ज्यादा ब्लड देने वाले की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दे रहा है वो निस्वार्थ दान दे रहा है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा आदमी रोगी है, उसका दूसरा प्रायोरिटी है, वो दान लेने वाला है, तो इसलिए आप ये ना सोचे कि किसी की मदद करने के लिए आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता।
1: जी गुड आफ्टरनून, टुडेज टॉपिक इज नोबल वन ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस, FM रेडियो हैज लैक्स ऑफ फैंस टुडे, प्रोग्राम हैज मोटिवेटेड मेनी पीपल कि वो डोनेट करें और इस फियर से बाहर निकले। सैल्यूट टू डॉक्टर साहब फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं हमारे श्रोता। और एक और हमारे पास मैसेज आया है, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मैडम आपको भी नमस्कार, मैं शबनम हूं, 125 बार मैं रक्तदान करने वाले डॉक्टर को बधाई देना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से। मेरी बेटी की उम्र 19 साल है, लंग इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन बताया गया, तो क्या ऐसी अवस्था में रक्तदान करना सही है?
0: जी बिल्कुल नहीं, जब उनको इस बीमारी से रिकवर करने दें और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये भी मुझे हिसाब से अनलेस कि इनको कुछ ज्यादा खराब इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जिसमें ठीक होने में समय लगे, पर 19 साल के अगर वो किसी टेम्परेरी

0: ये बीमारी से ग्रसित है लंग्स की, तो ठीक होने के बाद डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर कहूंगा कि जितने लोगों ने आज मुझे इतनी खुल के बधाई दी है, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम एक बार मुझे सही धन्यवाद देने के लिए जाके डोनेट जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो डोनेट करते रहें। मेरे लिए वो धन्यवाद ज्यादा आवश्यक और ज्यादा अच्छा रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस विशेष दिवस पर आप यहाँ हैं हमारे साथ। डॉक्टर रहे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो चीफ रह चुके हैं जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और तो हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। नमस्कार, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: सो दोस्तों प्रोग्राम यू वनी चलदा पिया, सेगमेंट शुरू हो गया गांदा पंजाब ते साडे फरमाइशा जिहड़ियां आ आणियां शुरू हो गई है फेसबुक पैसेंजर ते सिमरन, मतलब इन्हां फरमाइशां इकट्ठियां 5-6 आ गईआं। हुण मैनूं समझ नहीं आ रहा मैं पहली किहदी पूरी करां।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ते असीं ना इदां नंबर लगा के रखिआ जिहदी सब तों पहलां आई आ उह हुण डाउन चल गिआ, ते असीं पर उहनां दी फरमाइश सब तों पहलां चलावांगे। क्यों?
0: सो इस करके हरप्रीत जी तुसीं टेंशन नहीं लैणी, सब तों पहलां तुहाडी आपां फरमाइश पूरी करांगे जिहड़े पठानकोट तों ने।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ते दोस्तों एक तकनीकी खराबी करके तुहाडे कोल माफ़ी चाहुंदे आ, अज जिहड़ा फोन कॉल शायद तुहाडा साडे तक ना पहुँचे पर तुहाडे जिहड़े फेसबुक मैसेंजर ते मैसेज होणगे ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ।
0: ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ, ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने आज तीन बसा नू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाल संबंधित पांच तीर्थ स्थानां दी यात्रा लई रवाना कीता। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे उस व्हाट्सएप सुनेहे नू फर्जी करार दिता जिस विच राष्ट्रीय विद्यार्थी लैपटॉप योजना तहत मुफ्त लैपटॉपां लई अर्जियां स्वीकार किए जाण दा दावा किया गया। अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने सरहद पारों नशीले पदार्थों की तस्करी के 2 लाख वक् वक् मामलों में 2 मुलजमान 5 किलो तो वध हैरोइन समेत गिरफ्तार किया। औरतों के आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप च भारत का पहला मैच बर्मिंघम च पाकिस्तान के नाल हो रहा है। भारत टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी कर रहा है। ऐसे हुण तक दी आपां मिलदे हां, तुसीं सुणदे रहो अपने प्यारे दोस्त दे नाल प्यारी गल्लां।

क्रिकेट विश्व कप भारत का पहला मैच बर्मिंघम च पाकिस्तान नाल हो रहा है। भारत टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी कर रहा है तो भारत ने 170 रन बनाए। सो ऐसे ही हूं तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, तुसी जुड़े रहो साढ़े नाल।

अगली फरमाइश जोड़ी आई है साढ़े को वो आई है जी चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा जी जी इन्होंने फरमाइश की है जी हार्दिक अभिनंदन रेनबो जलंधर को सजता करते हैं और जो हमारा मनोरंजन कर रहा है सारा श्रेय पेशकर्ता को जाता है और जो सभी से मोहब्बत करते हैं इन्होंने लिखा है जी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान दी गीत पंडित जी मेरे मरने के बाद लिखा जी फिर जी 9 बजे फरमाइश भेजे जी इंतजार करना लो जी थोड़ा इंतजार जरा है मैं मुका देना है फरमाइश लैके मैं जुड़ रहा है इन्हें तो फिर अपनी फरमाइश है 9855100107 रात 10 बजे तक मैंने शेयर कर दे लो तो अगली फरमाइश आ रही जी लता मंगेशकर की आवाज़ के फिल्म रोटी कपड़ा और मकान तो

अगली फरमाइश आई जी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप तनाल कालका तो आदेश शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बेटा बजाज इन्होंने फरमाइश की है जी ए जाते हुए लम्हों सारा ए जाते हुए लम्हे जरा ठहरो गीत दी लो जी यह फरमाइश लेके मैं जोड़ा तुम अपनी फरमाइश में 9855101027 रात 10 बजे तक शेयर कर सकते हो किसी भी पुरानी हिंदी फिल्मी गीत या किसी पुरानी पंजाबी फिल्मी गीत दी फरमाइशा जरिया है वो लेके आ सकते हो तो विनोद राठौड़ रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ बॉर्डर पर अट्रैक एंजॉय करो।

फरमाइश के सेन अगे लैके चलते अगली फरमाइश जी आई है वो आई है जी दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो फरमाइश करने वाले ने हीरा मनी वर्मा फरस मनी वर्मा पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नाल है गया जी नोखे लाल वर्मा इन्होंने फरमाइश की तो फिल्म इज्जत दे ये दिल तुम बिन कहीं लगता ही नहीं हम क्या करें। इस नाल ही मैं कुछ एक फरमाइश नाम जो है इस फरमाइश के नाल जोड़ना चाहूँगा वो है जी महाराज कीर्तनपुरी स्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी इन्होंने किया है जी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ तो। इस तो अलावा साढ़े को नाम आया जी सुनील पाठक कमल पाठक दीपक मलो दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सोचा सिंह पाठक बिनोदपुरी अनारकली बाजार जगराओं तो। इस तो अलावा साढ़े को नाम आया जी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आजाद नगर लक्स हरिद्वार तो। इस तो अलावा श्री सुधाकर राजा जाधव डॉक्टर प्रशांत राजा जाधव संचित वयाल प्रथमेश देशमुख सर्वत देशमुख प्रणाली देशमुख सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख आया जी साढ़े को मैसेज कालेगांव जफाराबाद तो। एक होर नाम जरा मैं जोड़ना चाहूंगा वो है जी राजकुमार डोडी प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी गांव फरासे जिला हिसार तो। इन्होंने मिली जुली फरमाइश के नाल अगला ट्रैक जरा लैके मैं जुड़ रहा थोड़े ना

फरमाइश लेकर सैनम अगे लेके चलते हैं। आज की आखिरी फरमाइश लेके मैं जुड़ रहा है आइया जी के निरमला पटियाला तो मुकेश पता नीलम पता नितिन पला करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश पता। इन्होंने फरमाइश की है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। इस तरह ही दिल चाहता ना मैं इतने समेटन दी इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं जे दिल चाहता दे उस पार शामे गजल दे विच। तद तक तुम एंजॉय करो आज की आखिरी फरमाइश।

मुस्कान से शुरू तेरी यादों पर ख़त्म, मेरा हर दिन एक खूबसूरत कहानी सा लगता है। शामी गजल के इस महफिल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सचिन, और आज इस महफिल में कुछ एक गजलें कुछ एक कहानियाँ लेके मैं जुड़ गया हूँ फिर से। आरव और मीना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन आरव के दिल में दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। मैं मीना से बहुत प्यार करता था मगर कभी कह ही नहीं पाया। सुन के ऐसा लगता है ना, शायद हम में से ही किसी की कॉलेज की कहानी है। कॉलेज का आखिरी दिन था, आरव ने अपनी सारी भावनाएं एक चिट्ठी में लिखी और तय किया कि आज वो नैना को दे देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन नैना को अचानक दूसरे शहर जाना

जल्दबाजी में वह सबसे विदा लेकर चली गई और आराम की चिट्ठी उसके बैग तक पहुंच ही नहीं पाई। उस रात बारिश हो रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस चिट्ठी को देख रहा था। कुछ अल्पास दिल में ही रह जाते हैं, कुछ ख्वाब आंखों में ही बह जाते हैं। हर कहानी मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी याद रह जाते हैं। समय बीतता गया, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन आरव उसने वो चिट्ठी यूं की त्यों संभाल के रखी। 5 साल बाद एक दिन वह किताबों की दुकान पर गया। वहां उसकी नजर एक बार फिर नैना पर पड़ी। कुछ समझ तो नहीं पाया, आंखें बस नैना को देखती रही। और इतने में नैना ने भी आरव को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। बातों बातों में नैना बोली, तुम जानते हो कॉलेज के बाद मुझे हमेशा लगता था कि तुम कुछ कहना चाहते थे। आरव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। और फिर उसने बैग से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। नैना हैरान रह गई। वक्त बदल गया, मौसम बदल गए, मगर कुछ एहसास नहीं बदले। जो बात बरसों पहले कहानी थी वो आज भी मेरे दिल से नहीं निकले। नैना ने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें नम हो गई। मैं बोली, काश ये चिट्ठी मुझे 5 साल पहले मिल जाती। आरव मुस्कुराया और कहा, शायद तब हमारी कहानी इतनी खूबसूरत नहीं बनती। मोहब्बत को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं, हर सफर का कोई साहिल मिले ये भी जरूरी नहीं। कुछ लोग उम्र भर दिल में बस जाते हैं, उनसे रोज मुलाकात हो ये भी तो जरूरी नहीं। श्यामी गजल की इस महफिल में कुछ कहानियां, कुछ गजलें।

मुलाकातें किस्मत लिखती है और कुछ यादें वक्त भी नहीं मिटा पाता। रोहन रोज शाम को शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर बैठा करता था। वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन उसे किसी की याद दिलाती थी। वो याद थी अनुष्का की। सालों पहले इसी स्टेशन पर दोनों पहली बार मिले थे। एक छोटी सी मुलाकात जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों घंटों स्टेशन की बेंच पर बैठकर बातें करते थे। ट्रेन आती जाती रहती थी लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ रिश्ते यूं ही खास हो जाते हैं, बिना वजह दिल के पास हो जाते हैं। जो लोग मिलते हैं तकदीर में कहीं, वो जिंदगी का एहसास हो जाते हैं। एक दिन अनुष्का को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। विदा लेते समय उसने कहा, अगर प्यार सच्चा हुआ तो एक दिन हम फिर यहीं मिलेंगे। रोहन ने मुस्कुराकर हामी भर

लेकिन दिल में एक डर था कि शायद ये आखिरी मुलाकात है। दिन महीने बने, महीने साल बन गए, मगर रोहन जब भी उदास होता उस स्टेशन पर चला जाता। तेरी यादों का मौसम आज भी आता है, हर गुजरा लम्हा मुझे तेरा पता बताता है। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, पर दिल कहाँ किसी की बात मान पाता है। एक शाम बारिश हो रही थी, रोहन उसे पुराने बेंच पर बैठा था। अचानक किसी ने पीछे से कहा, आज भी यहीं बैठे हो? यह आवाज सुनकर जैसे वक्त थम गया। पीछे मुड़कर देखा तो अनुष्का खड़ी थी, वही मुस्कान, वही आंखें, वही अपनापन। रोहन की आंखों में खुशी झलक गई। अनुष्का बोली, मैंने कहा था ना, अगर प्यार सच्चा होगा तो फिर मिलेंगे। कुछ वादे वक्त से बड़े होते हैं, कुछ रिश्ते दूरी से बड़े होते हैं। जो दिल से जुड़े हो एक बार, वो कभी जुदा नहीं होते। दोनों लंबे समय तक चुप रहे, क्योंकि कभी कभी खामोशियां भी वो सब कह देती हैं जो शब्द शायद कह ही नहीं पाते। जाते जाते रोहन ने पूछा, इतने सालों बाद भी लौट आई? अनुष्का मुस्कुराई और बोली, कुछ लोग घर जैसे होते हैं, चाहे कितने भी दूर चले जाओ उन्हीं के पास आना पड़ता है। मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, हर किसी का अपना आसमान नहीं होता। जो लोग दिल में बस जाते हैं एक बार, उन्हें उम्र भर भुलाना आसान नहीं होता। शामी गजल के इस महफिल में अगली गजल आपके दोस्त सचिन के साथ।